0: Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
1: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: मूव फॉर 10 आ गया है, दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: وذلك أضعف الإيمان.
1: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 core.org.uk।
3: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
4: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
3: This is Inspire FM.
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
6: Last time on Akhri Mojza.
7: Puri tarah se mukhtalif lafz hai Arbi zuban ka. Quran ek maine mein use kar raha hai aur baki sari Arbi ki kitabein aajkal kisi aur maine mein use kar rahi hain, aur is tarah ki sainkdon misalein hain. Isiliye agar purana muhavra samajh na aaye aur aap Arbi behtareen bol lo, iska phir bhi ye matlab nahi hoga ki aapko Quran samajh mein aa gaya. Jis tarah aap अच्छी भली उर्दू भी बोल लो, उसका मतलब ये नहीं है कि गालिब या इकबाल या 200 साल पुरानी कोई तालीफ आपको समझ में आ जाएगी. तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी बात मैं आपसे करना चाह रहा था. कल बड़े खूबसूरत मुहावरे पढ़ेंगे इंशाल्लाह.

0: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
1: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Loneliness. Loneliness can be a very painful thing. That's why prisons use it as a severe punishment. But constantly being around people can be dangerous too. It can make you feel distant from Allah, which slowly weakens your relationship with Him. This can happen even if you're praying 5 times a day. All great relationships require quality time, so be alone with Him every day. Ask Him for the things you need and want. Share your fears and worries with Him. Complain to Him about your pain and sadness. Thank Him for everything and rely completely on Him, because He is the only one who will never leave you alone.
3: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582-725000.
4: If we became angry, we should try to control ourselves by saying,
5: أعوذ بالله من الشيطان آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان آمنت بالله ورسله.
6: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
8: Allah bakhshish teri aankhon ki taraf dekh rahi hai, mohsan tere darbar mein chup chap khada hai. Main roz gul bazm-e-naat ke sath aapki khidmat mein hazir hota hoon. Har jumatul mubarak आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ में हमद या नात दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं. तो सुनते रहिए इंस्पायर एफएम 105.1
9: एवरी फ्राइडे एट 11 AM.
10: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर एफएम, द टाइम इज नाउ मिडडे.
0: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
11: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
12: Azad lala, aaj mera ek question hai, wo ye hai ki आपको कैसे पता चलेगा कि नाउ इट्स द टाइम टू लेट इट गो. जैसे हमने चीजें पकड़ी होती हैं बस छोड़ते नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि बस अब जाने दो. वो हमें कैसे पता चलेगा कि नाउ इट्स द राइट टाइम.
0: जब हर्ट करने लगे, जब दर्द जो है वो काबू से बाहर होने लगे, जब वक्त जो है वो आपको लगे कि यू आर होल्डिंग इट फॉर टू लॉन्ग और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप वैसे ही क्लिंग ऑन करके किसी चीज़ के साथ बैठ गए हैं और आप बजाय इसके कि उस डर को प्रोसेस करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको लेट गो करें, क्योंकि अब आप ज़िंदगी के उस डेकेड में या उस जगह या उस पोजिशन में नहीं हैं. तो अगर कोई चीज़ आपने बचपन से पकड़ी हुई है तो वो बचपन के स्कार्स और तकलीफ़ें सीखने के लिए थी. उस वक्त आपके इख्तियार में चीज़ें नहीं थी, उस वक्त वो आपके लिए अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स थी, अब कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं. इस बात को आपको लगता है कि हम कहीं से भी रब के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे कि जी मेरे साथ बचपन में यह हुआ था या मेरे साथ जवानी में यह हुआ था या मेरे साथ धोखा हो गया? वो आगे से जवाब है तो क्या, किसने कहा था कि ज़िंदगी आपको दूंगा तो पार्टी चल रही होगी वहाँ पर? उसमें तो स्ट्रगल्स हैं, उसमें तो टूल्स दिए थे, एक यू नो एक एनवायरमेंट दिया था, उसके अंदर आपने कुछ चीज़ों में ऑपरेट करना था, कुछ थोड़े से अरसे के लिए, एक वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपने कुछ चीज़ें करनी थी. क्या हुआ ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फिर किया क्या? वो जो टैलेंट दिया था, ये जो मकसद दिया था, ये जो रास्ते में लोग मिले थे, ये जिसने सपोर्ट की थी, इनको वापसी में क्या दिया आपने? इनको क्या मिला आपसे? दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, आपके माँ बाप को क्या मिला, आपके दोस्तों को क्या मिला, आपने बनाया क्या, दिया क्या दुनिया को, अपने बाद क्या दुनिया आप छोड़ के आए हैं? तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने साथ इंटरनल डायलॉग करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में दुनिया में कई चीज़ें जो हमने पकड़ के रखी हैं वो खुदा के साथ लड़ाई है हमारी. और लड़ाई कैसे है? क्योंकि एक नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ है, उसको हमने डिसरप्ट किया हुआ है. हम वक्त के साथ चीज़ें सीख कर आगे बढ़ने के बजाय, हम जो नेचुरल फ्लो का मतलब है कोई फौत हो जाता है आप उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, तो क्या नेचुरल नहीं है लोगों का मर जाना? आप रब को मानते हैं लेकिन उसके नेचुरल प्रोसेस को नहीं मानते, आप तो उसके खिलाफ ही खड़े हैं ना. हम कोई चीज़ आपको मिली थी वो ले ली गई है, तो क्या आप साथ लेके आए थे उसको? यहीं दुनिया में मिली थी, उसी ने दिलाई थी, उसी ने लिए, आगे कुछ और पड़ा हुआ होगा आपके लिए. आप कोशिश तो करें आगे तो निकलें आप. तो जब आपको मकसद की ज़िंदगी की समझ आई थी आ जाएगी, जब आपको खुद का पता लग जाएगा मैं कौन हूँ, जब आपको रब का पता चल जाएगा वो कौन है, वो क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, ये कहीं अलाइन भी हो रहे हैं आपस में दोनों के? नहीं, हम नमाज़ें भी पढ़े जा रहे हैं लेकिन दुखी हैं, लंबे हमारे मुँह हैं, हम खामखा परेशान दुखी. और कहा गया, क्लियर कट कहा गया, मोमिन को कभी हुज्न मलाल नहीं होता, यानी वो हर वक्त का दुखी और वो यू नो मलाल पीछे की कहानी को याद करके, काश मैंने ये ना किया होता, वो ना किया होता, हो गया, गुजर गया, आगे क्या है? क्योंकि उसने यहाँ परमानेंट नहीं रहना है. यहाँ अगर देखें, अगर मुझको कोई 50,000 साल भी रहना होता तो चलो फिर भी तुक बनती थी कि चलो जी ये हो गया, वो हो गया, आगे कैसे चलूँगा. टाइम ही 50, 60, 70 साल है, किसी के पास इससे भी कम है. तो इसके बीच में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया. बचपन में माँ बाप मिले तो मसला, नहीं मिले तो मसला, बच्चे हुए तो मसला, बच्चे नहीं हुए तो मसला, दोस्त मिले तो मसला, नहीं मिला तो मसला, मोहब्बत मिली तो मसला, नहीं मिला तो मसला, शादी हुई तो मसला, नहीं हुई तो मसला, तलाक हो गई तो मसला, नहीं हो रही है तो एक और मसला. इन मसाइल में आपको क्या लगता है कि जिस काम के लिए आप आए हैं वो मजाक कर रहे हैं हम उसके साथ, और सैकड़ों सालों से यही ड्रामा चल रहा है, सास भी कभी बहू थी से बाहर निकलें, और यू नो हमने ज़िंदगी की माँ बहन और बाप भाई करके रख दिया है, अपना भी हमने ये कर दिया, दुनिया के साथ भी हमने ये कर दिया है, मकसद के साथ हमने ये कर दिया है. तो कब तक चीज़ों के साथ लटके रहेंगे? कब तक किसी और से पैसे लेके खाते रहेंगे बेगैरतों की तरह? कब तक किसी और की एनर्जी से एनर्जी लेके जिंदा रहेंगे बेशर्मों की तरह? कब तक? हमने वापस भी तो कुछ करना है किसी को. जो आदमी आपकी बात सुनता है सारे दुख लेके परेशानियाँ उस पर चढ़ जाते हैं और उसी से सब कुछ मांगने शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि उसको तो कुछ कहना ही नहीं है जिससे आपको एनर्जी मिल रही है. मेरी ज़िंदगी के कुछ 4-5 रॉक्स हैं पिछले 25, 30, 40 सालों से, हराम हो उन्होंने मेरे लिए जो एक वक्त में कर दिया, इट्स मोर देन एनफ. सारी ज़िंदगी मैं उनको ब्लेसिंग के तौर पर लेता हूँ, कभी तकलीफ़ परेशानी उनको नहीं बताता, शेयर कर ली, बात कर ली, लेकिन उससे का कोई मकसद नहीं होता कि उनसे कुछ लेना है या उनसे मुझे कोई सपोर्ट चाहिए. नहीं, वो हैं, यही बहुत बड़ी सपोर्ट है. वो मुझे जानते हैं, बहुत बड़ी सपोर्ट है. मुझे उनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, बहुत बड़ी सपोर्ट है. लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उनको इससे परवाह नहीं, बहुत बड़ी सपोर्ट है. तो बिल्कुल इसी तरह आपको भी समझ आ जाना चाहिए, बचपन की चीज़ें बचपन में अच्छी लगती हैं, जवानी की चीज़ें जवानी में करें,
13: मिडिल एज की चीज़ें मिडिल एज में हैंडल करें। अब आहिस्ता आहिस्ता हम मेच्योर हो रहे हैं और बुढ़ापे में जाके जितना हमारा बचपना है, जितनी हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो सामने आ जाती हैं। हम इतने बुरे और नीच सोचों वाले और इमोशनल और नीडी बूढ़े और बूढ़ियाँ होते हैं कि हमसे बच्चे मिलना ही नहीं चाहते, और इस चक्कर में हम उनको दूर कर देते हैं और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। तो सोचें समझें, अब सोचने समझने से आप क्या बनेंगे? एसेट बनेंगे। नेचर के साइकिल को एक्सेप्ट करने से आप क्या बनेंगे? एसेट बनेंगे। अपनी चीज़ों को खुद हैंडल करने से आप क्या बनेंगे? एसेट बनेंगे। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है इस दुनिया में कि एसेट छोड़ दे। नोबडी लीव्स एन एसेट। एवरीबडी वॉन्ट्स टू ओन द एसेट, दे जस्ट डोंट वॉन्ट द लाइबिलिटीज। देन डोंट बी अ लाइबिलिटी। जिंदगी में आप लाइबिलिटी बनने के लिए आए हैं। जानबूझकर तो आप कोई भी नहीं लाइबिलिटी बनेगा, लेकिन हम जानबूझकर कंपनी अपनी ज़ात को बैंकरप्ट करा देते हैं, खुद लाइबिलिटी बन जाते हैं। लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे मिलना नहीं चाहते, आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते। दोस्ती तो बड़ी दूर की बात है, शादी तो बड़ी दूर की बात है, पार्टनरशिप तो बहुत ही दूर की बात है। हम में से कई लोग इस काबिल भी नहीं उनके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उसमें आपके दिमाग में गेमें चल रही हैं, दुनिया, लोग, हालात, लोगों पर टांग रखना, कोई सोशल एक्सेप्टेंस के लिए चीज़ बना लेना, किसी के साथ पार्टनरशिप में अपने फ़ायदे उठा लेना। कल मैं हूँगा ही नहीं, पता नहीं कितना हूँ मैं। इस ड्रामे के अंदर फोकस करूँ मैं, या जो मुझको दुनिया में करना है और जिस तरह मुझे डील करना है इसी से मुझे आखिरत, जो हम कहते रहते हैं, अगर हम आखिरत के मानने वाले हैं तो आखिरत के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या इन्वेस्टमेंट है? तो जब है ही कुछ नहीं, तो मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलां, मेरा ये, मेरी शादी, मेरी तलाक, मेरा बच्चा, मेरे साथ ये, मेरे साथ धोखा, मेरे साथ बचपन में, मेरे साथ माँ बाप ने, मेरे साथ बहन भाइयों में, और बाहर निकल भाई इन सारी बातों से। एडल्ट आदमी ये बातें सोचता रहता है। हम लोग ज़हनी तौर पे क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? मैन चाइल्ड, मोरॉन्स, इम्बेसिल्स। एक्चुअल में हम ये हैं, और मैं तो बता चुका हूँ बहुत दफ़ा मर्दों और औरतों को कि ये जिनकी जो हरकत होती है, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, उसको उर्दू में ये कहते हैं, और इसको हम लोग गाली समझते हैं, लेकिन ये वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं हमारे अंदर के, जो जो भी इनर चाइल्ड जो अभी तक हील नहीं हो पाया, जो हम चीज़ों को समझ नहीं पाए। हमारी ग्रीड ही ख़त्म नहीं हो रही, हमारी लस्ट ही ख़त्म नहीं हो रही। हम वो उतना जमा करना चाहते हैं जितना हमने इस्तेमाल नहीं करना। जो हमने कमा लिया है वो उससे हमारी औलादें और लोग बर्बाद हो जाएंगे, बजाय इसके कि हम हर महीने काम करें उससे आपका कुछ बने और हर साल थोड़ी थोड़ी तरक्की हो, बजाय इसके कि इतना हो जाए कि आप पागल हो जाएं और उस पैसे को और उस चीज़ को छुपाते छुपाते अपने घर में और अपने कंपनी में और अपनी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ शुरू कर दें। तो ये जब आप इस तरह सोचना शुरू करेंगे तो इससे आपको सुकून आएगा। एक और बात जो यहाँ पर करना ज़रूरी है, देखें, जब आप बहुत नीडी होते हैं ना, या आप डेस्परेट हो जाते हैं, या आप किसी चीज़ की चाह में उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई मकसद हो, चाहे कोई फेम हो, कोई नेम हो, कोई भी चीज़ हो, तो फिर आपकी एक इंतहाई तकलीफ़ दे ज़िंदगी में आप पैर रख देते हैं, और ये एक विशियस साइकिल है, इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। और इससे आप क्या करते हैं? यू डिसरप्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। उसमें वक्त के ऊपर कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं, कुछ पहले दूसरे डेकेड में मिलती हैं, कुछ तीसरे चौथे में मिलती हैं, कुछ कभी नहीं मिलती हैं। इन चीज़ों के साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, नेचुरल साइकिल के अंदर ज़िंदगी चलती है। लोग आपसे मिलते हैं, अलहदा होते हैं, कुछ लोग थोड़े से वक्त के लिए साथ होते हैं, कुछ ज़्यादा वक्त के लिए, कुछ लंबे वक्त के लिए, कुछ लोग आपसे शुरू में, कुछ बाद में बिछड़ जाते हैं। ये एक नेचुरल फ्लो है चीज़ों का। कुछ चीज़ें आपके गिफ्ट से अलाइन ही नहीं करती, कुछ चीज़ों का आप में नेचुरल टैलेंट ही नहीं होता, कुछ चीज़ों का आपके लिए वो हिम्मत, वो ताकत, वो जेस्ट, वो रेजिलियंस ही नहीं होती कि आप वो हासिल करें। कई लोगों का वो प्रोफेशन ही नहीं होता, कई लोगों के लिए वो इंसान जिनके पीछे भाग रहे होते हैं वो इनके लिए नहीं होते, वो स्पेसिफिक रिश्ते के लिए नहीं होते, वो किसी और चीज़ के लिए होते हैं। उनके साथ हम ख़राब कर लेते हैं और उस वक्त को भी हम बर्बाद कर लेते हैं। तो जब आप डेस्परेट होने से बाहर निकलेंगे, नीडी होने से बाहर निकलेंगे, रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, इस फाइन बैलेंस को समझ जाएंगे कि व्हाट टू होल्ड ऑन टू, व्हाट टू लेट गो, इस बात को समझेंगे हाउ मच इज़ गुड इनफ, मुझे इस दुनिया में कितना रहना है, कितने साल रहना है, कितना पैसा, कितना नाम मुकाम मुझे चाहिए अपने बेसिक काम करने के लिए, और जो कुछ आपको मिला है उस पर ज़्यादा ध्यान होगा, दूसरों को क्या मिला है उस पर ध्यान देने से बाज आ जाएं, ताकि आप चीज़ों को बेहतर हैंडल कर सकें और ये प्रेशर आपको बॉदर ना करे। जब आप ये करेंगे तो आप क्या करेंगे? बदकिस्मती से इस स्टेज पर आके आप वो सोचना शुरू करेंगे या वो करना शुरू करेंगे जिसके लिए आपको पैदा किया गया है। और ज़्यादातर बदबخت हम लोग 35-40 में हमें आके ये बात समझ आती है कि हमें सोच कर करने के लिए पैदा किया गया है, करने के लिए जानवर, हशरातुल अर्ज, रींगने वाले, उड़ने वाले जानवर, इन लोगों के लिए इनको सिर्फ करना है, इनको और कुछ नहीं आता, इनमें बेसिक इंटेलिजेंस है। हम में हम में बहुत कुछ है, आर्टिकुलेशन की एबिलिटी से लेकर इल्मुल बयान से लेकर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम दुनिया को मुसख़र कर रहे हैं। दुनिया हमारे ताबे है, सब कुछ हमारे अंडर है, हम कॉन्कर कर चुके हैं दुनिया को। तो जब हमें ये सोच कर करने से होता है, हम 40 साल तक क्या कर रहे होते हैं, वरीइंग से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, परेशानी आती है, डेस्परेशन आती है, नीडीनेस बढ़ती है, आपकी फीलिंग्स बार बार हर्ट हो जाती हैं। तो वरीइंग से आप अपने आप को रॉब कर लेते हैं, आपकी एनर्जी से, प्रोडक्टिव थॉट से, क्लैरिटी ऑफ माइंड से, चीज़ों को देख नहीं सकते आप क्लियरली, क्योंकि आप वरी कर रहे हैं 30-35-40 साल तक। और थिंकिंग शुरू कर देनी चाहिए तो शुरू से ही, जिसमें आपको तमाम एस्पेक्ट्स आपके सामने हो जाते हैं। जब हम इतना अर्ज के साथ, इतनी पागलपन के साथ किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे, तो आपको इर्द गिर्द नज़र आना बंद हो जाता है। और कई दफ़ा जो चीज़ असल में आपके लिए, वो आप उस चीज़ की साइड पे पड़ी होती है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रिंजेस के ऊपर वो चीज़ें होती हैं, और विल आप टनल विजन में चल रहे होते हैं सिर्फ लॉन्गर रन में, तो वो आपको कभी नज़र नहीं आती। और रास्ते में कई लोग जो आपके साथ होने चाहिए थे, कई अपॉर्चुनिटीज़, कई इन्वायरमेंट्स जो आपके लिए थे जिसमें आप कमाल कर सकते थे, वो छोड़कर उन चीज़ों के पीछे, उन लोगों के पीछे, उस पावर या कुर्सी के पीछे आप भाग रहे होते हैं, जो आपके एंड में जब आपके हाथ आती है तो सब कुछ आप लूज़ कर चुके होते हैं, मेंटल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी, स्पिरिचुअल हेल्थ भी, रिश्ते भी, और बहुत सारी चीज़ें भी। तो इसको नज़र, ये समझना, ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, ये जिस बंदे को इतनी सी बात समझ आ गई, वो ज़िंदगी में उसको तकलीफ़ें, परेशानियाँ, फिर वो ढूंढा करेगा कि मुझे कोई तकलीफ़ मिले, कोई परेशानी मिले, कोई मसला मिले, मैं हल करूं। फिर आपको ये जो हर चीज़ आपके दरवाजे पे कोई तकलीफ़, परेशानी, मसाइल डाल जाते हैं ना लोग, ये ख़त्म हो जाएगा, आपका दुखना बंद हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा आपको, और फिर आपकी मर्ज़ी है, पिक एंड चूज़ करें आप। इससे बेहतर अगर क्लिप कोई समझता है कि रिकॉर्ड करा लेगा, तो वो नहीं हो सकता, वो सिर्फ़ आपके सर है, सारे सेहरे आपके सर चले जाते हैं सजीला जी, बार बार
12: ये सब कुछ आप करते हैं।
13: ये हुआ क्या था? अब बताएं, ये जो क्या बताया है, क्या समझ आई?
12: आपने तो मसले का हल, मसले की जड़ ही आपने खत्म कर दी।
13: मैंने पता है ये क्या किया है
12: जी?
13: ये मैंने, एक बंदा था जो बड़ा वीक था, ठीक है, वो किसी से मोहब्बत करता था, तो वो उस बंदी को कुछ बता नहीं सकता था कि मैं आपसे मोहब्बत फरमाता हूँ, अब हमारी शादी हो जाए, अब हमारे दो बच्चे हों जिनकी शक्ल मेरी तरह, अकल आपकी तरह, खुदा नखास्ता हो जाए, ठीक है, ये सब वो कह नहीं पाता था। तो उसका एक दोस्त था, जो एक बहादुर किस्म के बेवकूफ़ दोस्त होते हैं ना, जो सिर्फ उंगली करना जानते हैं, वो आपको मरवाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, तो वो आपको खाम खा की शह देते हैं, और फिर आपसे वो कहते हैं जी आप ना ऐसा करो, इस दफ़ा जाओ मर्द बनो और जाकर कह दो सब कुछ, ठीक है। तो वो बंदा फिर बड़ा तैयार श्यार होकर खुशबू वगैरह लगा के जाता है, और वहाँ पर उस बंदी के सामने खड़ा होता है, वो उसने अपनी स्पीच पूरी तैयार की होती है, और ऑफ कोर्स जब आप इतने डेस्परेट होते हैं, घबराए हुए होते हैं, हार्मोन्स बम्बार्ड कर रहे होते हैं, आपकी बेसिक चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन उसके लिए आप इतना बड़ा ड्रामा करके घबराए हुए, अगला बंदा बेचारा आम सा इंसान है, वही हर वक्त घबराया घबराया रहता है, उसको लगता है मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरे में तो कोई खास बात है नहीं, लेकिन अब आपके दिमाग में घवा बना हुआ है, तो उसने उसको मतलब हवा बनाए हुआ है, ठीक है, तो अब आप उसके सामने खड़े हो गए, तो ऑफ कोर्स आप अपना सारा लेक्चर भूल गए, ठीक है, मैं तो हाँ तो वो तो नहीं तो ये तो लेकिन तो फलां तो मैंने तो, अब जब ये कहने शुरू होते हैं तो उसको, तो अब वो दोस्त पीछे से उसे कहता है बोल सब कुछ, ठीक है, तो दोस्त की तरफ देखता है और फिर लड़की की तरफ देखता है और एक सांस लेता है लंबी से और कहता है सब कुछ। समझ नहीं, ये मैंने इसका एक छोटे से लतीफे में पूरी कहानी डाल दी है ऐसे ही, और मैंने पूरा समा बांधा है ताकि हर बंदे को नजर आए ये दोस्त कौन है, वो दूसरा कमीना दोस्त कौन है, वो लड़की बेचारी सामने कौन है जो दुपट्टा सीधा करके घबराई हुई है, ठीक है जी, और आपकी परफ्यूम से उसका सांस बंद हो रहा है और उसकी बॉडी ओडोर से आपका भी बंद हो रहा है, लेकिन आप जज्बाती हुए इस वक्त, ठीक है जी। लोग बड़े कमीने हैं जब वो कहते हैं सर आप तरह खुल के हंसते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। अरे भाई मैं रोज हंसता हूँ, लेकिन इतनी सीरियस बातें हो रही होती हैं लाइफ में, तो मैं लोगों को हंसाता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, उन पे भी हंसता हूँ, हर वक्त लोगों की टांगें खींचता रहता हूँ, लेकिन शो में मैं कहाँ हंसूँ, कोई मुझे हंसाने वाला बंदा आए मेरे से हंसने की कोई बात करे, ठीक है, फिर हम भी हंसेंगे आहिस्ता आहिस्ता।
12: आप तो हमें इतना हंसाते हैं, हमारे तो मुंह दुखते हैं उसके बाद,
13: क्योंकि सीरियस भी तो बातें करके सर भी तो दुखाता हूँ, तो फिर मेरा हक बनता है मैं मुंह भी दुखाऊं हंसा हंसा के, क्योंकि दुनिया में जो लोग आपको बहुत हंसाते हैं ना, फिर यही लोग आपको बहुत रुलाते भी होते हैं।
12: हाँ,
13: लेकिन आपने ये सोचना होता है कि जिस इंसान ने हंसाया है उसको कुछ थोड़ा बहुत लेवरेज दें कि वो कभी कभी आपको रुला भी सके, क्योंकि हंसाया भी तो उसी ने है ना। ये बिल्कुल ऐसा है, वही रब है हमारा जिसने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ जो हम भूल जाते हैं, और थोड़ा बहुत दुख, थोड़ी बहुत तकलीफ, थोड़ी बहुत परेशानी, वो भी हमें इतनी बड़ी पहाड़ जैसी इसलिए लगती है कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों को नहीं जानते। हम गजा के लोगों को कभी नहीं मिले उनको जानने के क्या है, हम कश्मीर के लोगों को कभी नहीं मिले, हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो लोग खा पी नहीं सकते उनको कभी नहीं मिले, अंडर नरिश्ड है, हम बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जिन लोगों को नहीं मिली, कई मजबूर गरीब लोग जो अदालतों में जेलों में सालों से सड़ रहे हैं बिना किसी गुनाह के, हम कभी उनसे नहीं मिले। तो जब हमें नहीं पता होता ना किसी चीज़ के बारे में, तो हम समझते हैं जो हमें पता है बस वही सब कुछ है और मुझे सब कुछ डिज़र्व करता हूँ। हालांकि अगर हिसाब किताब पे दुनिया में रब आ जाता ना, तो बहुत सारे लोगों के पास जो अभी है वो कुछ भी ना रहता, और जो कुछ मिला हुआ है वो उनसे ले लिया जाता। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन चीज़ों का जो हमें बिना अर्न किए, डिज़र्व किए मिला हुआ है। हमको सिर्फ कोशिश करके इसका शुक्र अदा करना है, और एक स्टेप फर्दर जाना है तो इसको डिज़र्व करना है, एक स्टेप और फर्दर जाना है तो इसको लोगों के साथ शेयर करना है, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो डोनेशन इन काइंड है, चाहे किसी से अच्छी प्यार भरी बात है, या कोई आसानी पैदा कर सकते हैं आप किसी भी अच्छी चीज़ में, आप कर सकते हैं, कोई ऐसा बूटा लगा सकते हैं जिसके साए में कल कोई बैठेगा, कोई ऐसी कोई ऐसा ज़कात का काम, कोई खैरात का काम, कोई ऐसी चीज़ जिससे लोगों की भलाई हो सके, उनकी ज़िंदगी, उनका मकसद क्लियर हो सके, यही सब कुछ है और यही बचत है। बाकी सब कुछ खाया पिया, गिलास तोड़ा, बाहर आने निकल आने, आखिर में ये किसको नहीं पता, यही हिसाब किताब क्लियर लिखा हुआ है। दुनिया में रब की किताब वाहिद चीज़ है, उसने पूरा हिसाब किताब लिख कर आपको दे दिया है, ये करोगे तो ये होगा, तुमसे पहले ने ये किया उनके साथ ये हुआ, देखो तुम कहीं ऐसे ना बन जाना, सोचो समझो देखो उसको, इस तरह चीज़ों को डील करो, जो चाहो खाओ पियो, उठो बैठो घूमो, उसके साथ इस चीज़ को पकड़ के रखना है और टुकड़ों में नहीं बटना है, कुछ एक्चुअल में नहीं है, और अगर नहीं करोगे तो ये ऐसा होगा और इस हद तक खतरनाक होगा। और ये दूसरा जो करते हो जिसमें छोटे से अच्छे कुछ मुट्ठी भरने एक काम, आसानी पैदा करने वाले, हकीकत को जानने वाले, लोगों के को मदद करने वाले, यतीम गरीब मस्कीन के साथ या जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके साथ मदद कर देने वालों के लिए, ये है और ऐसा ऐसा ऐसा है जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं है। तो अब आपने ट्रेड करना है या नहीं करना, ये आपके लिए है। और इसी सब के बीच में रहते हुए, सब कुछ इन्जॉय करते हुए, रब की मेहरबानियों को भी आप थोड़ा थोड़ा करके भी वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। काम इतना आसान है, इतना आसान है, इसीलिए उसको गफूर रहीम कहते हैं, क्योंकि सब कुछ दे दिया है, उसके बीच में तुम्हारी बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए तुम्हारी ये सब ये किया जाता है, और आखिर में होगा, होगा वही जो उसने कहा है। कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई बंदा कुछ भी कह दे वो नहीं होगा, पावरफुल से पावरफुल आदमी कुछ भी कह दे वो नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो उसने कहा है वो होता आया है, होता है, होता रहेगा। इसके अलावा अगर कोई आपके पास और भी, इसीलिए जिस तरह वो बात करता है, जैसे कम्युनिकेट करता है, जैसे वो चीज़ों को करके दिखाता है, इतनी ऑथेंटिसिटी सिर्फ उसमें है, इसीलिए वही अजीम अजीम तर है, और इसीलिए वो ऑल नोइंग ओमनिपोटेंट है, तो फिर लड़ाई किस बात की है। और ये जो बहुत मज़े के जो ना इज़राइलाइट्स को जो इज़राइल कहते हैं, उसका मतलब है द वन हु रेसल्स विद गॉड, यही हम करते रहते हैं, हम हर वक्त खुदा के कानून से रेसल करते रहते हैं, हमें दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, नविश्ता दीवार जिसे कहते हैं, हमें पता है क्या हमारा हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हम किस काबिल हैं किस जोगे हैं, सब पता है हमें, इस वक्त क्या हो रहा है आगे क्या हो रहा है, हम बड़े रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट हैं, हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन हम सिर्फ जोर लगाते रहते हैं, खामखा जोर लगा के कुछ नहीं होता। हमने भी लगाया 35-36 साल, सब का सब ज़ाया हो गया, जब समझ आया तो ज़ोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो कुछ चाहिए था वो वैसे ही मिल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट, तो इतना ज़ोर क्या लगाना, इतना वरी करने की, इतना पागल होने की, इतना जहनी मरीज़ होने की, इतना लोगों को पे जज्बात और हिजान अंगेज़ किस्म की वॉर लॉन्च करने की कोई तुक नहीं बनती है, कुछ भी नहीं, खामखा का ज़िया है। और जिसको नहीं समझ आती वो तो करता रहता है, रोज़ करते हैं, देखते रहते हैं, जिसने किया वो सिर्फ रास्ता ये बता सकता है, करके दिखा सकता है, बाकी जिसका जो दिल चाहता है वो करे। ठीक है जी, कैसे बनाती हैं आप ये क्लिप?
12: मैं कुछ नहीं करती साला, सब कुछ आप करते हैं।
13: यानी कि फिर वही वाली, ये तो आप बिल्कुल वही कह रही हैं जो मैं भी कुछ नहीं करता, ये सब आप करते हैं। क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं करके अगर ये बनता है और आपका भी कुछ नहीं करके ये बनता है तो अल्लाह करे हम सारे अच्छा हमारे बारे में शायद उन्होंने कहा था ना वो जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं तो ये था वो कमाल अब हमको समझ आए हम तो जलाल से जमाल तक बल्कि जमाल से जलाल तक पहुंचे और फिर कहीं ना कहीं हमें नजर आया कि हम कमाल मिस कर रहे हैं और ये सारे के सारे मेरे नेफ्यूज के नाम है
12: अच्छा ये जो भी आपने बताए
13: हाँ जी सारे के सारे बहुत टैलेंटेड और कमाल बच्चे हैं
12: माशाल्लाह
13: सारे अपने आप को हमसे बहुत समझदार समझते थे समझते हैं और समझते रहेंगे और एक मेरे भांजे ने एक दफा मुझे कहा जवानी में कि मामू अगर मैं आपकी तरह हैंडसम होता ना ठीक है ये बात है आज से कोई 25 साल पुरानी और वो भी बाद में उसने भी आर्मी वगैरह ज्वाइन किया मामू मैं आपकी तरह होता ना तो मैं लुट डाल देता ठीक है तो मैंने आगे से कहा मेरा पुत्र अल्लाह इसीलिए गंजे को नाखून नहीं देता क्योंकि वो अपना सर छीन लेगा तो रब ने तुझे मेरी तरह नहीं बनाया क्योंकि उसको पता था तो लुट डाल देगा
12: तो
13: लुट डालने की जरूरत नहीं है लुट आपके होने से वैसे ही पड़ जाती है आज वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा अपना रैंक्स वैंक चीज़ें ये सब कुछ करता है तो मुझे उसके बारे में कुछ उसने बड़ी एक दो बातें पता बड़े साल हो गए तकरीबन 15वीं मुलाकात नहीं हो सकी वो अपने काम पे होता है तो एक दो बातें मुझे पता चली जो मुझे नहीं अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो जब मुलाकात होगी और ये वो बच्चा हुआ करता था जब मैं स्कूल में हम पढ़ा करते थे तो हम सीनियर थे स्कूल में और इसको नया नया स्कूल में दाखिल किया तो वो स्कूल वही था तो जहाँ हमारी क्लास थी ना उसके बिल्कुल साथ वो घंटी लगी हुई थी वो यू नो पीरियड दिखाने के लिए नहीं वो क्लास का जो हाँ, पीरियड ख़त्म होता है तो वो जो घंटी बजती है तो बिल्कुल हमारे कान के पास लगी होती थी तो इसको हमने नया नया स्कूल में दाखिल किया उसी स्कूल में उनके रिश्तेदारों का भी था वो तो स्कूल में हम बैठे हुए हैं हमारी टीचर कोई बड़ी सब मुश्किल चीज़ मतलब पढ़ा रही है और हम बैठे हुए हैं वहाँ क्लास में हम भी पाँचवीं छठी में थे 10-12 साल के तो एकदम खिड़की में से आवाज़ आई मामू
12: आप लोग का एज डिफरेंस कम है
13: मैं तो जब पैदा हुआ था तो बताया तो है मैं जब पैदा हुआ था तो मैं मामू था
12: अच्छा
13: हाँ जी मेरी एक भांजी मेरे से एक साल बड़ी है हमें पैदा करने के लिए बड़ी तकलीफें काटी गई 35-34 साल की तपस्या की गई
12: आप बता रहे थे खान जी
13: उस तपस्या के बाद हम पैदा हुए पठानों के लिए उनको लगता था हमारी बड़ी जमीन है जो कि बाद में पता चला इतनी थी नहीं और उस गांव के जो ना जो कुछ लोग होते थे जमींदार उसमें हम लोग हुआ करते थे और हमें बड़ा मतलब बड़ी बात थी हमारी पैदाइश पहली दफ़ा गांव में वो केरोसिन ऑयल बदबूदार पंखा आया जो मेरी माँ लगा के बाहर चली जाया करती थी और जो हमारी घुटी जिसने डाली थी वो मेरी माँ कहती है हमसे गलती होगी हमने गलत बंदे से घुटी डाली आपको पता है मैंने शायद किसी शो में बताया था मुझे घुटी किसने डाली बचपन में खान जी जो थे ना उनकी जो नेचर थी पर्सनैलिटी थी जरा मेरी टाइप थी ना वो अपनी तरह का दूसरा इंसान दुनिया में लाने से डरते थे ठीक है ख्वाहिश बहुत थी उनकी वो पीरों फकीरों को नहीं मानते थे लेकिन मेरे चक्कर में उन्होंने बड़ी चादरें चढ़ाई ठीक है तो वो भी मान गए सब कुछ मान गए क्योंकि जब औलाद चाहिए होती है चीज़ें चाहिए होती हैं प्रेशर इतना होता है तो उन्होंने खान जी से मेरी माँ कहती है मैंने खान जी को बोला घुटी डाल दे तो उन्होंने कहा नहीं किसी और को लुपाओ ठीक है तो उस वक्त गाँव में एक बंदा हुआ करता था उसका ना खान जैसा कुछ नाम था वो सुबह सुबह माश्की था वो सुबह सुबह चमड़े के उस जमाने में लेदर के बड़े बड़े
12: हाँ जी, पानी होते जो डालते थे
13: हाँ तो वो गांव में आके घड़ों में सुबह सुबह पानी डाला करते थे तो वो हमारे सारे जो गांव के जो हमारे जो लेम के घर थे उसकी ड्यूटी थी कि वो सुबह सुबह ये पानी डाला करे आके तो वो सुबह पानी डालने आया वो मलंग सा आदमी था उसका कोई घर बार कोई कुछ नहीं था तो उस जमाने में जहाँ सबको घर बार और मामलात होते थे वो मलंग सा एक आदमी था जिसका कोई घर बार नहीं था आगे पीछे कोई नहीं था तो वो आया सुबह सुबह तो उससे उन्होंने मुझे घुटी डलवा दी तो मेरी माँ बाद में कहती हाय गड़बड़ गलती हो गई हमारे घर मलंग पैदा हो गया इतनी खतरनाक घुटी कहती है उसकी थी हमें नहीं पता था तो जब भी मैं सीधी सही बात करने लगूँ मेरी माँ कहती थी हमें पीर फकीर नहीं चाहिए सीधा सीधा काम करने वाला बंदा चाहिए शादियाँ करो बच्चे करो पैसे कमाओ फलां करो इस किस्म की बातें तो मैं कहता अच्छा ठीक है वही काम मेरे क्या आप कह रही हैं जिसकी वजह से आप इतनी दर्दमंद जिंदगी और हर वक्त अपने दुखड़े सुनाती रहती हमको
0: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं नज़में सुनना चाहते हैं तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं मिक्स क्लाउड पे स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है एंड्रॉयड है ब्लैकबेरी है स्मार्टफोन्स हैं वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। تو ہم یاد رکھیے گا زندگی لی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.
14: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
15: Inspire FM.
16: Inspire 105.1 FM.
4: When we enter the bathroom, we say, Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
17: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
18: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
17: We can also offer guaranteed rental income.
18: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
19: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
4: When we travel in a car, in a train, or in a plane, we say, Bismillah.

0: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
1: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
3: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM.
4: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
5: ये सब हर कोई जो है ना कुछ अजीब चीज़ें बेच रहा है जो उनके पास है ही नहीं जज्बात की बातें कुछ दिनों में आप आसमान पे हैं फिर एक दिन आप ज़मीन पे होंगे लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे ही नहीं जब आपने उनकी मर्ज़ी पे चीज़ नहीं की 10 मर्ज़ी पे करें एक ना करें तो वो आंखें बदल जाएंगी सो ये मुझे ये पंजाब में आकर ये सब पता चला इसीलिए पंजाब मुसलसल मार खा रहा है और इसीलिए सदियों से जो पंजाब के हालात हैं वो नहीं बदले दूसरी तरफ सरहद में आप जो कुछ कह रहे हैं अगर वो नहीं कर रहा कोई तो गवर्नमेंट्स भी बदल जाती हैं रिश्ते भी बदल जाते हैं हालात भी बदल जाते हैं मामलात भी बदल जाते हैं तो ये काफ़ी कल्चर का डिफरेंस आया फिर मैं अमेरिका आया फिर मैंने अमेरिका में कुछ मेरी लर्निंग हुई जो 4-5 साल मैंने और मैं बड़े प्यार से मैं कह दूँ फिर मैं जब सिविल लाइफ में आया तो मैंने देखा तो यहाँ तो कोई सिविल ही नहीं है तो फिर तो आर्मी में उसके मसाइल थे सिविल में इनके मसाइल थे तो दोनों को मिला के जो चीज़ें हमने की फिर जो रिलीजन में हमें जो पढ़ाया गया जब मैं यहाँ पे आया उस वक्त भी मैं डिफरेंट रिलीजन पढ़ता था मेरे क्रिश्चियन हिंदू सिख वगैरह फ्रेंड हुआ करते थे जो कि लोगों को समझ नहीं आती थी तब मेरे और मीडिया के भी फ्रेंड्स थे कुछ और पॉलिटिशियंस भी फ्रेंड थे बड़े बड़े लोग भी मेरे दोस्त थे तो वो भी लोगों को समझ नहीं आती थी और मुझे रिपोर्ट्स आती थी कि भाई आप इससे मिल रहे हैं उससे मिल रहे हैं क्या चाह रहे हैं मैं कह जी मैं कुछ नहीं चाह रहा ये मलंगों के पास खुद आते हैं तो हम तो ऐसे लाइफ देख रहा था मैं एक्सपीरियंस कर रहा था हम तमाम रिलीजन के लोगों को मिल रहा था क्या नाम खाने हर किस्म के रेस्टोरेंट्स में जाके खा रहा था ताकि यू नो सब मुझे पता चले क्या है क्या नहीं है हमने तो ज़िंदगी में कभी नहीं खाई थी हलीम 21 ईयर तक हलीम मैंने लाहौर में आके खाई निहारी मैंने कभी नहीं खाई थी वो वहाँ पे हम तो सीधा सीधा पुलाव बिरयानी तो बिरयानी भी इस तरह सच नहीं होती थी पुलाव होते थे साग गोश्त आलू गोश्त इस किस्म के जो ना पाए इस किस्म के खाने होते थे ये खाकीना और ये सारी चीज़ें तो आमी में आके फिर लाहौर में डिफरेंट किस्म के खाने हम समझे कि कुन्ना क्या होता है और फिर उसके बाद हरीसा क्या होता है ये सारी चीज़ें फिर हमने फिर अमेरिकन फूड्स एंड इटालियन फूड्स एंड सारे फिर हमने मैंने कहा अपनी तनख्वाह से हम ये सारी चीज़ें स्टेक्स इन्जॉय करेंगे सब कुछ करेंगे ताकि पता चले तो बाकी मैनरिज्म वगैरह तो सारी आमी आपको सिखा देती है तो ये करते

0: Assalamu alaikum. You have been listening to the Daily Imam Booster. Stay tuned to Inspire 105.1 FM for more inspiring talks and lectures.
1: अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही Inspire FM की टीम से राब्ता कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। Inspire FM, आपका अपना रेडियो स्टेशन।

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
2: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है, आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं, और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 7 o'clock.
4: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salatul Maghrib.
5: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-maghrib ka waqt hua chahta hai.
6: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72 110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

सूरतिन मिसली, इसकी मानिंद एक सूरत लाओ। सूरत हूद में आता फातू बिआशर सुवर मिसली, इस जैसी 10 सूरतें ले आओ। सूरत बनी इसराइल में आता अला यातू बिमिसली हाज़ल कुरआन, इस कुरान जैसा ले आओ। सूरत तूर में आता फल यातू बिहदीस मिसली, इस बात जैसी कोई बात ले आओ, लेकिन ऐसी कोई चीज़ वो न बना सके, कुछ भी न ला सके। और लोगों ने कोशिशें भी की लेकिन कोई भी कुरान जैसी चीज़ न ला सका, क्योंकि इसके अंदर जो अल्फाज का इंतखाब है और जो तरतीब है और जो इसका स्टाइल है और जो तरकीब है और जो इसके अंदर आपस का रब्त है और जो इसमें पेशन गोइयाँ हैं और जो अहकामात हैं और जो खूबसूरती है कि पढ़ पढ़ के इंसान का दिल नहीं भरता, और जो इसके अंदर एक नगमगी है, यानी जब इसको पढ़ा जाता है तो दिल के तारों को छेड़ देता है, सुना जाए तो भी लुत्फ देता है। कोई किताब एक से दूसरी मर्तबा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन कुरान जितनी दफ़ा पढ़ो कम है, हर दफ़ा नया मतलब समझ आता है, नए नए उकदे खुलते हैं, नई नई चीज़ें सामने आती, और दिल है कि भरता ही नहीं। तो इसलिए उनको चैलेंज किया गया कि तुम भी इस किताब जैसी कोई चीज़ लाओ। वदू शुहदा अकुम, और बुला लो अपने गवाहों को, अपने मददगारों को, अपने सपोर्टर्स को भी बुला लो, खुद नहीं काम कर सकते औरों को भी ले आओ। या ये है कि बहुत से अपने सपोर्टर्स इकट्ठे कर लो, हाजरीन को जमा कर लो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिस जिस को चाहो अपनी मदद के लिए बुला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, किस बात में? अपने इस दावे में। कौन सा दावा? कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घड़ ली, क्योंकि वो कहते थे ना हम यकूलून अफ्तरा, या वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको घड़ लिया। कुल फातू बिसूरतिन मिस्ली, अगर तुम ये समझते हो तो इस जैसी एक सूरत लेकर आओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फइन लम तफअलू, फिर अगर तुम न कर सको, क्या न कर सको इस जैसी कोई सूरत बनाने का काम। वलन तफअलू, और साथ ही फरमा दिया हरगिज कर भी ना सकोगे। सूरत बनी इसराइल में इसके बारे में आता कि खा तुम सब एक दूसरे के मददगार बन जाओ तो भी ये नहीं कर सकोगे। ला यातून बिमिस्ली ही वलव कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, सब एक दूसरे को सपोर्ट दें तब भी ऐसी कोई किताब नहीं ला सकते। तो फिर क्या करो? बाज आ जाओ इसकी मुखालफत से, इसके इनकार से। फत्तकुन्नार, आग से डरो, आग से डरो। कौन सी आग? जहन्नम की आग। अल्लती, वो जो, वकूदुहा, उसका ईंधन, फ्यूल, अन्नास, लोग हैं, वल हिजारा, और पत्थर। वो आग जलाई जाएगी, भड़काई जाएगी, किससे? इंसानों और पत्थरों से। पत्थरों की आग बहुत शदीद आग होती है, और खुद इंसान उसमें बतौर फ्यूल काम करेंगे। अब इंसानों के जिस्म में क्या है? बाल। कैसे जलते हैं बाल? तेज़ी के साथ। इंसान के अंदर फैट है, चर्बी। चर्बी कैसे जलती? आग जलती है ना तेल से, जैसे पहले ज़माने दिए होते थे तो उसको तेल में डुबो के रख देते थे, तो देर तक जलता रहता है। तो फ्यूल क्या है? वो तेल होता है ना फ्यूल। अब भी क्या, आपकी गाड़ियाँ किससे चलती? तेल से। तो इंसान के जिस्म के अंदर फैट भी है, बाल भी हैं, फिर क्या? हड्डियाँ। हड्डियों में क्या होती है? कैल्शियम, चूना, और चूने से हरारत निकलती। कभी आपने चूना रॉ शक्ल में देखा हो? आप उस पर पानी डालें तो क्या होता है? उसके अंदर से जैसे आग निकल रही होती, इतनी हरारत निकलती है, बाज़ोकत कई हज़ार सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर चला जाता है। फिर इसी तरह इंसानी जिस्म में फास्फोरस होती। फास्फोरस वो मादा होता है जो दिया सलाई के ऊपर लगाया जाता है, वो माचिस नहीं होती, उसके ऊपर जो छोटा सा होता है, आप कभी उसको जलाएं तो क्या होता है? इतना सा लगा होता है, थोड़ा सा, वो एकदम भड़क उठता है। तो कुरान की मुखालफत का अंजाम क्या है? आग। फत्तकुन्नार, आग से बचो। कैसी है वो आग? जिसमें इंसान फ्यूल का काम करेंगे, इंसानों से आग भड़केगी, यानी इंसानों को जब आग में फेंका जाएगा तो आग कम नहीं होगी, आग और ज़्यादा हो जाएगी। फलन नजीदकुम इल्ला अजाबा, अजाब बढ़ता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। और हिजारा जो है ये गंधक के पत्थरों के लिए कहा जाता है।

0: और सल्फर भी जब जले तो, कभी सल्फर वाला पानी देखा है आपने चश्मे से निकलता, कितना शदीद गर्म पानी होता है, हाथ नहीं डाला जा सकता। तो वो पत्थर जो खूब भड़केंगे और ऊपर से इंसान भी भड़केंगे, आप सोचे थोड़ी देर के लिए अगर आग पे हाथ नहीं रख सकते तो उसके अंदर जलना तो क्या, और जल के जिस्म से शोले अगर निकल रहे हों, क्या आलम होगा। और इद्दत लिल काफिरीन, वो तैयार की जा चुकी काफिरों के लिए जो तौहीद और रिसालत का इनकार करते हों। तो ये जो आयात हैं ये दरअसल एक तरफ अल्लाह सुबहान तआला की वहदानियत के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह का सबक देते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह को इलाह मानो, और दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे या नहीं, इसके लिए गवाही उस दौर में भी कुरान था और आज भी क्या है, कुरान। और ये याद रखिए कि ईमान और कुफर के बीच में आज मेयार कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत से लोग अल्लाह को मानते हैं लेकिन सिर्फ अल्लाह को मानने वाले मुसलमान नहीं कहला सकते जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना माने, कलमे के दूसरे हिस्से को ना माने, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही फ़र्क हैं ईमान लाने और ना लाने के बीच में। तो आप पर ईमान बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला की इबादत के लिए दलील क्या दी गई कि अल्लाह कौन है जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हारा रिस्क उतारा, आसमान ज़मीन बनाया, वो है अल्लाह तुम्हारा माबूद। अब दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल होने की दलील क्या है, कुरान। सूरत यासीन के शुरू में आता है यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कसम है कुरान हकीम की आप रसूलों में से हैं। और कसम गवाही के लिए होती है, कुरान गवाह है, हिकमत वाला कुरान, कि आप दरअसल भेजे हुए हैं, अल्लाह ने आपको भेजा है। क्योंकि कुरान जैसी कोई किताब 1400 साल से कोई और ला ही नहीं सका, कोई ऐसी चीज लिख ही नहीं सका। और किस दौर में उतरी आप सोचिए जरा, ना वो प्रेस का दौर था ना वो लिखने वालों का, और अरब के मक्का के शहर में तो पढ़े लिखे लोग वैसे ही ना होने के बराबर थे, उनको पढ़ने लिखने से कोई दिलचस्पी नहीं थी, आज भी नहीं है ज़्यादा जी। तो उस दौर में भी उनके यहाँ और बहुत सी खूबियाँ थी लेकिन पढ़े लिखे लोग कम थे। ऐसे में एक किताब उतारी गई जिसकी हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा लिया, उसे किस पे लिखा गया, खजूर की छाल पे, पत्तों पे, हड्डियों पे, चमड़े पे, टुकड़ों पे, मुख्तलिफ चीज़ों के टुकड़ों के ऊपर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो एक जिल्द में अभी नहीं महफूज हुआ था, बिखरी हुई थी मुख्तलिफ चीज़ों में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको जमा किया था और फिर सारा एक जगह पर लिखवाया, और फिर हज़रत उस्मान के दौर में उसकी ऑफिशियल कॉपीज़ बनी और मुख्तलिफ इलाक़ों में गई थी, और फिर आज हमारे पास तो रंगा रंग शक्लों में छपा हुआ मौजूद है। और इसमें 1400 साल से कोई चेंज नहीं आया, एक लफ्ज़ भी ना इसका निकला है और ना ही इसमें कोई दाखिल हुआ है। ये कुरान गवाह है, ओरिजिनल सोर्स, कि जिस पर ये आया, जिसने ये पेश किया वो सच्चा रसूल है। क्योंकि इबादत हो नहीं सकती जब तक के हम अल्लाह के लिए खालिस ना हो और जब तक के तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ना हो। तो इसलिए साथ ही रिसालत को साबित किया गया है, वबशर और खुशखबरी दे दो, किसको, अल्लदीना, उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, व अमिल सालिहाती और उन्होंने नेक अमल भी किए। तो नेक अमल कौन से नेक अमल है, जिसमें नंबर एक नीयत अच्छी हो और नंबर दो सुन्नत के मुताबिक हो। इसके लिए हमें इखलास चाहिए और इल्म चाहिए, क्या चाहिए, इखलास और इल्म अमल साले के लिए, क्योंकि जब तक इल्म ना हो इंसान अमल नहीं कर सकता। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में एक बाब बांधा है, अल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, बात और काम से पहले इल्म ज़रूरी है। आप कोई बात करें वो सही है या नहीं तो उसके लिए क्या मेयार है, इल्म होना चाहिए ना आपको। जो आप किसी को कुछ बता रहे हैं, अगर आपके पास इल्म ही नहीं तो हो सकता आप गलत बता रहे हो। तो मुंह से जो बात निकालेंगे वो कब इबादत बनेगी, जब वो इल्म के साथ कही जाए। जैसे नमाज हम कैसे सही कर सकते हैं जब तक हमें इल्म ही ना हो, पाकीज़गी हासिल नहीं कर सकते जब तक हमें इल्म ना हो, रोज़ा रखा नहीं जा सकता जब तक कि इल्म ना हो कि रोज़ा किसको कहते, हज करना है आपको कर नहीं सकते जब तक कि आपके पास इल्म ना हो। तो अमल साले के लिए क्या शर्त है? इखलास और इल्म। इल्म किसका? सुन्नत का। और इखलास किसके लिए? अल्लाह के लिए। जब अमल दुरुस्त होते हैं, अन्ना लहुम, बेशक उनके लिए, किन के लिए? ईमान ला के नेक काम करने वालों के लिए जन्नातन बाग हैं, एक नहीं कई बाग हैं। आज किसी का एक छोटा सा गार्डन हो और वो चंद फूल लगा ले तो फूला नहीं समाता, और वो आती है बर्फ तो सब कुछ वहीं दब जाता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ एक नहीं कई बाग हैं। बाग के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, दुनिया में भी गार्डन को वक्त चाहिए होता है, जो लोग नहीं वक्त देते उनका फिर हाल देखने वाला होता है उसमें क्या कुछ उगा हुआ होता है ना, फ़र्क या नहीं? तो इसी तरह आखिरत की जन्नत पाने के लिए कहाँ काम करना है? आज दुनिया में काम करना है, दुनिया में मेहनत करनी है। तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उस बाग में चश्मे भी जारी हैं, नहरें भी चलती हैं, और नहरें जिस तरह बाग में वहाँ सिर्फ पत्ते नहीं होंगे फल भी होंगे, इसी तरह नहरों में सिर्फ पानी नहीं होगा दूध और शराब भी होगी। यानी वो सिर्फ देखने के लिए खूबसूरत चीज़ नहीं, दुनिया के बहुत से बाग तो सिर्फ आप दूर से देख के बस खुश होते रहिए, ना उसमें कुछ खाने की चीज़ है ना पीने की, अक्सर तो ऐसे बाग होते हैं ना, लेकिन वहाँ के बाग उसमें खाना भी है पीना भी है, बाग भी हैं नहरें भी हैं। शराब वहाँ की जो है आगे कुरान पाक में वजाहत आएगी कि वो कैसी होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन आती है, ठीक है? यानी खमर का लफ्ज़ आता है, शराब असीर जूस के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ खमर का लफ्ज़ आता है, वह अनहार मिन खमरन, और खमर अरबी में शराब ही के लिए आता है, यानी जो ड्रिंक है। कुल्लमा, जब कभी, रुज़िकू, वो रिस्क दिए जाएंगे, मिन हा उसमें से, मिन समरत इन फलों में से, रिस्कन एहतमाम के साथ जो रिस्क दिया जाता है, यानी उन बागों में फल होंगे वो उनको दिए जाएंगे खाने को। कालू, तो एकदम उनका रिएक्शन क्या होगा? हाज़ अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो हमने पहले भी खाए थे। लेकिन वो सिर्फ ज़ाहरी मुशाबहत होगी, वह उतू बिही मुतशाबिहा, कैसे ज़ाहरी मुशाबहत? उनकी शक्ल, रंग और उसका साइज़ या उसका टच, वो ऐसे लगेगा कि जैसे वही है जो पहले भी था, लेकिन जब वो खाएंगे तो उनका टेस्ट मुख्तलिफ होगा। वलहुम, और उनके लिए, फ़ीहा उस जन्नत में, अज़वाज मुतहरा, पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, पाकीज़ा जोड़े होंगे, और औरतों के लिए शौहर और शौहरों के लिए बीवियाँ। और यहाँ ख़ास तौर पर उनकी जो खूबी बयान की गई है वो है मुतहर, पाकीज़ा, साफ़ सुथरे, अंदर से भी बाहर से भी, कोई नफ़रत नहीं, हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, किसी के ख़िलाफ़ कोई दिल में मैल नहीं, खुशी ही खुशी। वहुम फ़ीहा खालिदून, और सबसे बड़ी बात यह कि वो हमेशा वहाँ रहेंगे, वहाँ से निकलना ही ना चाहेंगे। ला यबगूना अन्हा हिवला, एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं होना चाहेंगे, उसी जन्नत में रहना चाहेंगे। और खालिदून में आप देखिए कि हदीस में आता है, जन्नत और जहन्नम में जाने के बाद एक फरिश्ता ऐलान करेगा, ऐ जहन्नमियों अब मौत नहीं आने की, और ऐ जन्नतियों अब मौत नहीं आने की, जो फरीक जिस हाल में है हमेशा रहेगा। और एक और रिवायत में आता है कि अगर अहले जन्नत खुशी से मर सकते तो मर जाते ये खबर सुन के, यानी कि आखिरी दर्जा क्या होता है किसी ज़बरदस्त खबर का कि इंसान ख़त्म हो जाए शौक, और अहले जहन्नम गम से मर जाते, लेकिन वहाँ मौत किसी के लिए भी नहीं है, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, ख़त्म, अब हमेशा हमेशा की ज़िंदगी शुरू हो गई। और ये है वो जगह जहाँ के लिए अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है, कि ज़मीन बनाई, इंसान को पैदा किया, अपनी पहचान कराई, पैगंबर भेजे, याद दहानी कराई, इबादत का हुक्म दिया, तरीके बताए, अब क्या चाहा ये करके आओ मेरे पास। और फिर ये है वो जगह जो अल्लाह ताला की तख्लीक का मास्टरपीस है, यानी बाकी भी तख्लीक बड़ी प्यारी, आसमान ज़मीन भी उसी ने बनाए, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो क्या है? जन्नत। और वो किसके लिए है? अपने उन बंदों के लिए जो अपनी चॉइस के साथ, अपनी खुशी के साथ अपने आप को अल्लाह के आगे झुका देते हैं, सबसे ज़्यादा उससे मोहब्बत करते हैं, सबसे ज़्यादा उसी से डरते हैं, सबसे ज़्यादा उसी की रिस्पेक्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा उसी को अपना मतलूब, मकसूद और महबूब बनाते हैं। दुनिया की हर चीज़, ख्वाह वो माल और औलाद हो, ख्वाह वो घर बार हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, वो सब सेकेंडरी है और सबसे टॉप पर उनके लिए उनका रब है। यही दरअसल इबादत है और इसका अंजाम और जजा खुशखबरी है उस जन्नत की शक्ल में, और ये आखिरी ठिकाना है और यही वो चीज़ है जिसके लिए सबको स्ट्रगल करनी चाहिए। इसके मुकाबले में बाकी चीज़ें कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज़ फना होने वाली, ख़त्म होने वाली, कुछ भी नहीं बचेगा। जिस जिस चीज़ को हम समेट के जमा करके रखते हैं सब चला जाएगा। अल्लाह के सिवा कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो हमेशा के लिए हो। इंसान अल्लाह के सिवा जिस चीज़ से भी दिल लगाता है, जिस चीज़ से भी मोहब्बत करता है, वो सब इंसान को दुख देते हैं, वो सब नाकिस हैं, वो इंसान को इत्मीनान नहीं दे सकते। आप देखिए, दुनिया में आप एक चीज़ के लिए जीते हैं, मरते हैं, तड़पते हैं, ये मिल जाए, अच्छा जब वो चीज़ मिल जाती फिर क्या होता है बताइए, अगला स्टेप। अब आप कहते हैं इसमें ये खराबी है, इसमें वो खराबी है, इसमें ये है, उसमें वो। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, ना कोई ज़मीन का टुकड़ा, ना कोई मुल्क, ना इलाका, ना इंसान, ना माल और दौलत के ढेर, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो इंसान को खुशी दे सके। किसी चीज़ को मतलूब ना बनाए, बस वो ज़रूरत है, मतलूब नहीं है, मकसूद ना बनाए, पर्पज़ ऑफ लाइफ ना बनाए। पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है जो इन आयात में दिया गया है, या अय्युहन्नासु अबुदु रब्बकुम, रब की इबादत है पर्पज़ ऑफ लाइफ, अल्लाह ने इसलिए हमें बनाया है। और मंजिल क्या है, जन्नत है, और जन्नत की कीमत क्या, अमल ईमान के साथ, कांस्टेंट स्ट्रगल, मेहनत। जैसे कोई बाग लगाने के लिए आपको मेहनत चाहिए, जन्नत के लिए भी कोशिश चाहिए। बार बार जन्नत बाग बाग बाग का लफ्ज आता है, और बाग का लफ्ज सुनते ही कोशिश याद किया कीजिए, क्योंकि बाग लगता नहीं मेहनत के बगैर। हम सब से मेहनत मतलूब है, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।
1: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: السلام عليكم مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر اف ایم
3: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه Ibn Abbas in the explanation of the statement of Allah Move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith Said Allah's messenger, used to bear the revelation with great trouble, and used to move his lips quickly with the inspiration. Ibn Abbas moved his lips, saying, I am moving my lips in front of you as Allah's messenger used to move his. Said moved his lips, saying, I am moving my lips as I saw Ibn Abbas moving his. Ibn Abbas added, So Allah revealed, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. It is for us to collect it and to give you, O Muhammad, the ability to recite it, the Quran, which means that Allah will make him, the Prophet, remember the portion of the Quran which was revealed at that time by heart and recite it. The statement of Allah, and when we have recited it to you, O Muhammad, through Gabriel, then you follow its Quran recital, 75.18, means listen to it and be silent. Then it is for us, Allah, to make it clear to you, 75.19, means then it is for Allah to make you recite it, and its meaning will be clear by itself through your tongue. Afterwards, Allah's messenger used to listen to Gabriel whenever he came, and after his departure, he used to recite it as Gabriel had recited it.

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK Office 03001233774 core.org.uk।